0: ngộ mà mất nào mà tiện nữa. All time beats with
1: Jami.
2: जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं.
0: साथी दिन अवन एक दांग हाथ रवैना कांग. All time beats with Jami.